Padre Radhasama. अचानक राजे जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे आई साहब आई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली थोड़ा समा राजे

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद सावधा पाठ

भद्र लाले उग आशिक न दानद हेच कस्तीम पे या कूत दानद चश्म गौहर बार इसका तर्जमा किसी ने पीता है पंजाबी ते दिखया है

0: से पग जल तर गया, जिन्हें तो है ध्यायो
1: मैं पूर्ण प्रताप पायो,
0: जो सेवे सत मुरार
1: से पग जल तर गया,
0: जो बोले हर हर

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी का जो एक सफर है अते ओ सफर की मंजिल नूं असीं जो खो चुके हाँ, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके,

कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है. हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है. हाउ मैनी. इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है. सफल होना तो बहुत दूर की गल. सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर. बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तक की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए. पंक्ति सुन वाली है. कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे. कहते यात्रा सफल ते की करनी. यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है. पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है. बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नूं जा रहे हो. बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम. कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो. जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूं. किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं. महाराज जी अपनी बाणी की पंक्ति आख दें, कहते हैं

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब।

दिन समझे सिद्ध हाथ ना आए। नानक अंगद को बप धरा धर्म प्रचुर इह जग मो करा अमरदास पुन।

0: सब गुरु
1: बिजे पूर्व देवना जिसकी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंतो शिव मन गहना तजात कबिलास को
0: जंको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप
1: जटा जूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी निवाजी साध सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों श्री ऋषभ कहने हैं, सा तो बाद दूसरा स्वर रे है, उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है, और पंचम जिसनों पा कहने हैं, सारे गामा पा पंचमा स्वर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे समेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम होता है, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: टेक है, क्या गुण तेरे साथ माली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी दरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गरवास ना पड़े।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।